أشد من

फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मिना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोजख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजरे नेक तैयार है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है।

ਆਨੰਦ ਜੀ ਸਨਾ ਹਯਾਤ ਨਬੀ ਬਿਸ਼ੇ

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: माँ खाधो गरम करे थी बेटा।
4: बुध थकल थकल पी लगे घड़ी खरीता
3: तहां जो पुट सुमई न थो पूरी रात माँ तक खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा
5: मेरी थकल को भी तेरे
4: तू हल वे माँ अच्छा तू

0: हे वट एड़ी शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तव्हां खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मां कीअं खाईंदमि
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बेहतरीन ग़िज़ा भाउ ऐं ॿार ॿिन्ही जो हक़ आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: अजरक के रंगों से रंगी
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
6: सिंध के दिल से निकली आवाज
7: GFM 88 नेटवर्क सिंध

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

बोर्डी जी भरसा फुर मज़म ते कतल थियल नौजवान जो लाश रखी धरणो। कुंभ थाने जे एडमिनिस्ट्री शाह स्टाफ वट फुर दौरान हथियार बदन नौजवान गुलाम मुस्तफा बुख्टी के कतल करण बाद फरार थी विया। मिस्त्री शाह स्टाफ धरने सबब रोड ब्लॉक बिनी पासन का ट्रैफिक मअतल थी वई। अमरीकी परडेही वजीर मार्को रोबियो चाहे ईरान खिलाफ प्रोजेक्ट फ्रीडम के रोकण जो सबब पाकिस्तान की दरख्वास्त हुई। पाकिस्तान जैसे तुम प्रोजेक्ट फ्रीडम के रोको तो असं समझौं था तो असा एक मुहिदे की पहुंची सकूं था। पाकिस्तान की अड़ी दरख्वास्त अस सफारतकारी के मौको दियण ला प्रोजेक्ट फ्रीडम के रोकण से मुतफिक थियासी। सदर ट्रंप सफारतकारी के तरजीह दे तो मसलो गालण वसीले हल करण चाहे तो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
4: जहाँ प्यार की रस्में, वादे कस्में, चाहत का इकरार है, वहाँ गुल बहार है। जहाँ प्यार, वहाँ गुल बहार।
3: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, मजबूत तने, लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
2: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
3: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो, बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो, बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो, घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो, ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो, हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
4: हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो ए होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे तक बरोज जुम्मो 12 वगे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-763।
0: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अलीबल नवाब कहने जो पलान में हम लोग कह रहे हैं सिंधड़ी भरसा पसंद पड़ने त नारी जे वासन पारा पलान में अगवा कल टे नारियूं बाजियाब न थी सघियूं ॻोठ हाजी अबूबकर जुड़न जो वासन 16 सालनि जी रिहाना 18 साल आसिया ऐं 10 वरनि जी नाज़िया बाज़ियाब न थियो पुलिस जे जवाब उन्हनि जे घरनि ते चढ़ाई टे ॼणा गिरफ़्तार करे आणण जो तलहंद मुंतकिल वाक़े जो केस दाख़िल न थियो मरीज शाहबर सां मोटरवे ते कराची खां पंजाब वेंदड़ मुसाफ़िर कोच कल्टी 10 ॼणा ज़ख़्मी गुडू इंटरचेंज भरिसां हादसे में औरतनि ॿारनि समेत 10 मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया पुलिस मूजिब मुसाफ़िर कोच सां हादसो ड्राइवर खे निंड जो झूठो अचण सबबु पेश आयो ऐं कुंडरी भरिसां ॻोठ रहीम चांडियो में नारी जो घर मां फाहो लॻल लाश हथ वीहनि वरनि जी भागुंती ज़ाल करमन कूलीअ जो घर मां लाश मिलियो इतलाह ते पुलिस वाकिए वारे हंधि पहुची नारी जो मड़ इस्पताल मुंतकिल कयो मुड़ुसु करमन कूली चवण आहे त ज़ाल घरू अणबणत सबबु भाउ खां इहा आपघात कयो आहे पुलिस मूजिबि शुरूआती तौर ते वाकियो आपघात लॻी रहियो आहे वधीक जाच करियूं पिया

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मैकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मैन, तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: सिंध के माथे का झूमर
0: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

जारी आहे। पालतरा इनकलाब जे बीहर गलती वजाइण ते फैसला तो जवाब ॾियण जी धमकी। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शिकारती चयो आहे त ईरान खिलाफ़ नई जारी जवाब फैसला तो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो। सदर ट्रंप पाकिस्तान जे चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो। सदर ट्रंप हिन वक़्त में ईरान मसले जो हल सफारतकारी ज़रिए चाहे थो। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां मुआहिदे जा इम्कान मौजूदु आहिनि। तहरान में फ़ैसिला केरु करे रहियो आहे, मुंझारा मौजूदु आहिनि।

यूएई के खबरन घुर्जे ईरान जी सबुर की हद है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई की मिलिट्री सेक्रेटरी मासन रज़ाई है तो यूएई ए इसराइल विच में लागपन का आगाह आयो। यूएई के इसराइली साजिशन में न फासण घुर्जे। तेहरान आबू धाबी से दोस्ती जरवाजा बंद ना कया।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज़।

देखिए ड्रामा सीरियल ना तुम जानो ना हम, पीर से जुमा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: सामीन नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
3: GFM 90.8।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: आसान न हूंदो ॾुखियुनि हालतुनि में सब्र ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजी सां अॻिते वधण ज़रूरी आहे. सदर ट्रंप पाकिस्तान जे चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो. सदर ट्रंप हिन वक़्त में ईरान मसइले जो हल सफारतकारी ज़रिए चाहे थो. अमरीकी परडेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो हो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां मुआहिदे जा इम्कान मौजूदु आहिनि. तेहरान में फ़ैसिला केरु करे रहियो आहे? मुंझारा मौजूदु आहिनि.

0: 12 ਵਰਸ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਬਜਣਾ ਕਤਲ ਹਥਿਆਰ ਬਦਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਠਾਣੇ ਸ਼ਾਨ ਚਾਂਡਿਓ ਕੇ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮਕਤੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਆਇਆ ਧੁਰ ਜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹਮਲੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਾਰਜੀ ਵਈ ਬੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਸਾ ਦੇ ਲਾੜੇ ਵਟ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੇ ਸ਼ਾਨ ਚਾਂਡਿਓ ਕੇ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਧੁਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਆਇਆ ਧੁਰ ਜੇ ਗੋੜ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਮਰਕਣ ਤੇ ਹਮਲੋ ਕਿਹਾ ਵਾ ਹੈ ਔਰਤ ਬੰਬੀ ਚਾਂਡਿਓ ਮਾਰਜੀ ਵਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਵਣ ਆਏ ਤੇ ਧੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਵਾਕਿਓ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਵਾ ਵਧੀਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ सिंधी भरसा पसंद पड़ने का नारी के वारसन पारा पलान में अगवा कल टिन नारियन के पुलिस बाजियाब कराए न सकी गोठ हाजी अबूबकर जोड़ने जो वासन सोरन साल की रिहाना अरड़ा साल आसिया अंजान वरिम की नाजिया के पुलिस बाजियाब कर में नाकाम पुलिस की जवाबदारी के घर से चढ़ाई टे जणा गिरफ्तार वाकई जो केस दाखिल न थो कोडी जी भरसा हथियार फुर दौरान मजम्मत नौजवान कतल वारसन लाश रखी थानो मिस्री शाह स्टाफ वट फुर दौरान मजम्मत हथियार बंदन गुलाम मुस्तफा बुख्ती के कतल कर वाक्य बाद मकबूल के वारसन ने बुख्ती की लाश रखी पुराने कौमी शहर से धरणो हयों जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो खेबर भरसा फसल की बेलता मिंदुरुन में झिड़ो 10 जणा जख्मी सूफी यूनिवर्सिटी रोड भरसा पठान सहता धुरन में झिड़े दौरान लथियों और कुआड़ियों लगन सबब बिन्हीं धुरन जहा 10 जणा जख्मी थी पाया अस्पताल मुंतकिल जख्मियों में सूमर खान सहतो जहीर नवीद सजाद अता मुजम्मल शहजाद पठान बाज और बया शामिल सकरण में एसयूपी पारा वधनल बदमनी खिलाफ रैली धरणो कापटन मीडिया सेंटर चौक का रैली कढ़ी मुख्तियार खर ऑफिस के गेट अगर धरणो हो मुजाहरीन पारा बदमनी खिलाफ़ नारेबाजी कई अमन अमान बहाल कराने जो मुतालबो अगवण चो तो पुलिस अमन बहाल कराने में नाकाम थी वही है सिंध में पानी की कोट सबब आबादगार सरापा एहतजाज पीर वसण में अली भरवा मौजाई शाख ए पीर वसण माइनर की पुछड़ी में 25 साल का पानी न पहुंचण करे आबादगारन जो एहतजाज किपड़ो भरसण लाल खान शाख की पुछड़ी में पानी की कोट सबब फसल तबाह थे लगा आबादगारन चयो तो पानी कोट सबब फसल नथा पोखे सकूं आपाशी अमलो मुंड के जमींदारन के रिश्वत एवज पानी वेकरो कर रो है करप्शन जो नोटिस वी पुछड़ी में पानी छो वे
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
5: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ए बादी बवासीर इनन सबन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई बरोज जुम्मो 12 वगे ताई एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-700।
6: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुन जो खास ख्याल रखो। डींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वगे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स एंड

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: जडे मां पंजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

तुम्हारे पास तो मौजज़ों का बादशाह है, तुम्हारे पास तो मौजज़ों का बादशाह है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सभी समाधान से मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दुआओं के संबंध है, साधु के बारिश खजानों के साथ दुआ है, पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नींद से जाकर कमी से आसमान तक जिंदगी से मौत चांद से तार तक हमसे खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप लोगों के साथ साथ है। तो प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अगर आप भी हसीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि खूबसूरत आप कैसे रह सकते हैं। हाँ जी, खूबसूरतियाँ हासिल करना आसान होता है, लेकिन खूबसूरती को मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल बात होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखें, अपनी खूबसूरती को बहाल रखें, तो आपने किस तरह जो है ना अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना है ये मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। तो इस पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलता है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करेंगे और कौन लोग इस्तेमाल करने वाले, किस तरीके कार को फॉलो करके आप इस्तेमाल करके ये बातें बताएंगे। और इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रोइजन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल जी, आपकी सिद्रा यहाँ पर आप लोगों के साथ साथ मुखातिब है। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हैं, तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ साथ तो जनाब जल्दी से जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के हालत है कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद एंड शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे में आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगी। तो पूरे 2 घंटे आप ही हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत ज्यादा वाली बातों के साथ, बहुत ज्यादा वाले फन के साथ और बहुत ज्यादा वाले खूबसूरती के राजों के साथ साथ। चलिए जनाब बताइए जरा कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना चाहते हैं तो जरा आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहाँ से मालूमात लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो वो भी कैसे अवेलेबल कराएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। तो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल जी, आपके होंठों पर 440 उल्के समाइल लाने का काम करती भाई आपकी सिद्रा, तो आपके होंठों पर 440 उल्के समाइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जनाब एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो कलाम सुनते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में और उसके बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या है जो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और

मेंटेन रहे, आप लोगों की खूबसूरती बढ़ी दी रहे, और आप लोगों को ये पता हो जनाब मार्केट में आपने जाना है तो आपने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब किया था। तो अगर आप लड़के हैं लड़कियां हैं परेशान बैठे हैं कि भाई ईद भी करीब आ रही है और हमने जो है अपनी स्किन को लेकर कोई भी तैयारी नहीं करी है, स्किन हमारी खराब हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, टेंशन की तो बात है ही नहीं, क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात हासिल कीजिए, नहीं मिल रहे वहां पर आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आपको नंबर बताया जा रहा है प्रोग्राम के अंदर जिसके ऊपर आप रब्ता करेंगे, कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि आप लोगों के एरिया के अंदर भी अवेलेबल हो जाए ये तमाम प्रोडक्ट जो कि आप इजीली जाकर परचेज कर सकें। तो अगर आप नंबर डायल करना चाहते हैं तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595। ये जनाब महर इरफान सियाल साहब का नंबर है, अगर आप डायल करेंगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा, नंबर के ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, बात करेंगे महर इरफान सियाल साहब आप लोगों से, उनको बताइए कि आप प्रोग्राम सुनकर जो है ना अवेलेबल कराना चाहते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर वाइट एज के प्रोडक्ट्स, डी स्किन के प्रोडक्ट्स, ताकि वो जो है ना वो जान सके कि कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो आप बस थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दिया करें और आप बता दिया करें कि आपके एरिया में मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट्स या अभी तक नहीं, तो जल्दी से अवेलेबल कराते जाइए। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप किस तरह से हमें ज्वाइन करने वाले हैं, अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज को फिर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ पेज को भी आप फॉलो कीजिए और उसके ऊपर आपको जो हमारी पोस्ट मिलती है उसको भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। तो शेयर करते रहिए बहुत ज्यादा वाला, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है, जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, और इसके अलावा इस्तेमाल करते जाइए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप लोगों के लिए है जनाब, आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अगर आप ये सोच रखते हैं ना कि भाई जान हाँ जी गर्मियों का जब भी सीजन आता है तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो ये कहते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं गर्मियों के सीजन में, हमारी स्किन जो है वो और ज्यादा मजीद खराब हो जाती है। तो आप लोगों के लिए इस गर्मियों के सीजन इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं जिनका आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी करेंगे, चाहे अगर आपके चेहरे पर एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं या फिर आपके चेहरे पर फेयरनेस का मसला है या फिर आप कोई अच्छी सी नाइट क्रीम नहीं सर्च कर पा रहे, तो भाई आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है, व्हाइट एज का फेस वॉश मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा है, उसके अलावा व्हाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है, जो लोग सोप लगाते हैं वो सोप लगाएंगे, जो लोग फेस वॉश लगाते हैं वो फेस वॉश लगाएंगे। उसके अलावा अगर फेयरनेस का जिक्र आ जाता है तो भाई आपके पास व्हाइट एज की लवली क्रीम होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर एक्ने बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर मौजूद है तो आपके लिए डॉक्टर पिंपल आयुर्वेदिक का ये ट्यूब है जो कि एंटी एक्ने फार्मूला है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे के एक्ने छू मंतर हो जाते हैं। तो व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हैं जो कि डॉक्टर पिंपल नाम से ये एक्ने वाला ट्यूब आपको मिल जाता है, इजीली आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ना मजीद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि भाई आप लोगों को हेयर रिमूविंग लोशन भी मिल रहा है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है, और उसके अलावा आपके लिए लोशन भी मौजूद है। लोशन तो खैर आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे लेकिन मैं बता रही हूँ कि प्रोडक्ट इतने सारे हैं। और उसके अलावा डी स्किन के प्रोडक्ट्स की जाने बातें हैं तो डी स्किन प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मुनासिब सी कीमतों के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए और हमेशा बोलिए जनाब कि आप भी हसीन हैं, खूबसूरत हैं और बहुत ज्यादा खूबसूरत मजीद बनना चाहते हैं। ओके जी यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं, इरम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कशफ हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, फहद दे रही है, सऊद दे रही है हमारे साथ नवाबशाह से, और कशफ आपने गाने की फरमाइश कर दी है, ठीक है जी। उसके अलावा वालेकुम अस्सलाम, खूबसूरत आवाज की मलिका, मेरा नाम आपका नाम मुझे समझ नहीं आया, मोरो शहर से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, वेलकम, खुशामदीद। इमरान अली बिरोही भाई भी हमें सुन रहे हैं, इमरान भाई कैसे ही ठीक ठाक है, मजे में प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है उनको भी वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है, और साथ ही साथ आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन करते जाइए, और जरा बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में फन करने के लिए, बिल्कुल रेडी शेडी। ओके यहाँ पर टाइम भी हुआ जाता है कि हम जरा ना शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जो नाम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से।

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hemi Diamond Glow Bleach Cream. This program is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है. मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में. पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है. दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है. पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार.
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर टोपियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अमाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशोरे रबते 0327-9984-7038।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: GAFM 88 नेटवर्क।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: ट्राई कर सकते दिन में बस लगाइए अपना फेस वॉश कीजिए उसके बाद लगाइए फिर देखें कि आपकी स्किन किस तरह ग्लोइंग बनती जाती है आप करना चाहते हैं यानी कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं आपका कोई काम है कोई आप बाहर जाने वाले इंसान यानी आप कॉलेज गर्ल पढ़ने वाले एज की लवली हैं आप भी क्या कर सकते हैं दिन में बस लगाइए अपना फेस वॉश कीजिए उसके बाद लगाइए फिर देखें कि आपकी स्किन किस तरह ग्लोइंग बनती जाती है आप सपोर्ट होता है ये हमें दिखाता है कि आप लोगों को वाकई हमारे जैसे करते हैं सुबह लगाएंगे शाम को लगाएंगे दोपहर को लगाएंगे फेस वॉश भी बिल्कुल वैसे लगाएंगे अगर व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो जनाब उसका इस्तेमाल आप दिन में भी कर सकते हैं रात में भी कर सकते हैं जब आपका दिल करे तब कर सकते हैं क्योंकि ये एक फेयरनेस क्रीम है अगर आप मेकअप की जगह पर इसे यूज करना चाहते हैं यानी कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं आपका कोई काम है कोई आप बाहर जाने वाले इंसान हैं आप कॉलेज गर्ल हैं पढ़ने वाले हैं होती हैं ये आप लोगों का सपोर्ट होता है ये हमें दिखाता है कि आप लोगों को वाकई हमारे प्रोग्राम से मोहब्बत है प्रोग्राम से मोहब्बत कीजिए और साथ साथ जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट से भी मोहब्बत कीजिए और इसके अलावा इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती में इजाफा और लोग आपसे भी मोहब्बत करें ठीक है समझ रहे हैं और यहाँ पर जो है गाना लगाते हैं ये वाला गाना सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत गाना है ये रिमिक्स वर्जन में गाना है और साथ साथ मेरे ख्याल में कमेंट्स आप लोगों के काफी सारे ऊपर भी चले गए लेकिन कोई बात नहीं

बाहर जाने वाले इंसान हैं, आप कॉलेज गर्ल हैं, पढ़ने वाले हैं, होती हैं, ये आप लोगों का सपोर्ट होता है, ये हमें दिखाता है कि आप लोगों को वाकई हमारे प्रोग्राम से मोहब्बत है। प्रोग्राम से मोहब्बत कीजिए और साथ साथ जो है ना वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट से भी मोहब्बत कीजिए और इसके अलावा इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती में इजाफा और लोग आपसे भी मोहब्बत करें, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो है गाना लगाते हैं, ये वाला गाना सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये रिमेक्स वर्जन में गाना है। और साथ साथ मेरे ख्याल में कमेंट्स आप लोगों के काफी सारे ऊपर भी चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गया। और कहती शो लाइव है, बिल्कुल जी लाइव है, आपको क्या लग रहा है। और उसके अलावा जी आप पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बहुत ज्यादा वाली ऑडियंस आ जाए हमारी पोस्ट पर और लोगों को ये ना लगे कि भाई पोस्ट जो है वो लाइव नहीं है, क्योंकि जब ऐसा लगता है आप लोगों को थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी रश होती ना पोस्ट पर, तब आपको ये लगता है, मुझे लगता है, तो रश बढ़ाइए। और बताइए अभी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड ए स्किन ब्यूटी शो। अच्छा वफा, मीर मुनव्वर अली कहते हैं मुझे लगता है आप नाराज हैं मुझसे, इसलिए मुझे आप शामिल नहीं करती हैं शो में। नहीं, आपने जब जब कमेंट किया तब तब आपको कमेंट मैंने शामिल कर दिया प्रोग्राम में, वैसे नाराजगी आखिर क्यों की जाएगी आपसे। और चाचा खाले जुड़े जो कहते हैं कि जिंदगी उस वक्त पुरसकून हो जाती है जब इंसान हर दुख हर तकलीफ और हर आजमाइश अल्लाह आजमाइश पर अल्लाह के लिए सब्र करता है। बिल्कुल जी, ये सही बात है।

韩剧。

नाम से प्रोग्राम, आपका अपना प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं और साथ साथ डायल करते जा रहे हैं 03-15-799-0595 नंबर डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर पर, आपके गोट में, आपके शहर में, आपके सिटी में, आपके करीबी जनरल स्टोर पर, आपके पाड़े में, हर जगह अवेलेबल हो जाए ये तमाम प्रोडक्ट जो कि आप लोगों को बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को नाम आना चाहिए प्रोडक्ट का, तो नाम भी याद कीजिए कौन सा प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए है, तो इस्तेमाल कीजिए, ऑल स्किन टाइप के लिए है, लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। अच्छा, अब्दुल रजाक जरदारी हमें सुन रहे हैं। अब्दुल रजाक जरदारी भाई, आपका बहुत शुक्रिया वेलकम के साथ साथ। अनवर भाई क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कर रहे हैं निंद्र।

कैसे सोच लेते हैं आप। चलिए फिर आपकी ही भलाई है, इसके अंदर आप इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है जी। और निधि कहती है कि आए हाय पता नहीं। और मकसूद अली जूनी जो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक है, तब उदा किया है मकसूद। हाँ जी, काफी टाइम का पोई तमाशा जी प्रोग्राम जो हिस्सों बने आयो काले गुम थी वया हुआ। अच्छा, असा सिंधियन जी ने एकड़ी गाल या भी हुंदी आ, त अगर असा नी तबीयत खराब थी वने ने कोई असा का पुछना ते छा थियो, असा बदले में की जरूर चंदा अल्लाह इचा थियो आई अल्लाह इचा तो थी अल्लाह इचा थियो, यो मतलब असा नु परमानेंट हुंदो आ। सो चाहे खबर हुंदी भी आहे, असा जानी दा भी असा के छाए, पर कोई भी अगली मानो के जरूर चंदा त अल्लाह इचा तो थी अल्लाह इचा थियो।

0: ओके जहाँ से प्रोग्रामर ज्वाइन करते जाइए और बताइए अभी हमारे साथ मौजूद है लगा रहे नहीं लगा रहे वाइटेज के प्रोडक्ट्स ये भी बताते जाइए और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज़ ब्रेक की जाने जाएंगे सुबह शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए आप सुन रहे हैं वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावे से मैं जरा यूँ जाकर यूँ वापस आती
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: जडे माँ पांजो ख्याल रखन दिया है त सेहत नसलन ताई हलन दिया है ही पेगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
4: साथ बेहतर थी आहे ईरान अमेरिका ऐं नारजा मुल्क पाकिस्तान ते एतमाद कर रहा आहिनि चटादार अमन हासिल करण आसान न हूंदो लेकिन हालतुनि में सब्र ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजी सां अॻिते वधणु ज़रूरी आहे सदर ट्रंप पाकिस्तान चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो सदर ट्रंप हिन वक़्त बि ईरान मसइले जो हल सफ़ातकारी ज़रिए चाहे थो अमरीकी परडे वज़ीर मार्को रूबियो चवाद पाकिस्तान चयो हो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां मुआहिदा जा इम्कान मौजूद आहिनि तेहरान में फ़ैसिला केर कर रहियो आहे मुझारा मौजूद आहिनि पाकिस्तानी सालसी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि तेहरान अमरीकी सिटीज़न ते जवाबु ॾेई चुको आहे ईरानी परडे वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमन हुरमत बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि यूएई समेत ख़िते में मौजूदु कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो
7: हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हाँ हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलन फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं पर जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700
8: में गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी महिरबानी करे एहतियाती उपाउ वठो बिना ज़रूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो ॿाहिरि निकिरण वक़्तु कंध ऐं जिस्म खे ढकियो घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ लाइ पेश कयो वियो
9: हर चप्पा हर गोशा
10: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
9: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, asli glow har diya josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

भी जनाब सुबह वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहराब और मादली और जनाब लाड़काना की लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. सो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आप जान चुके हैं कि भाई आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर आप लोगों के साथ हम जरा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी, ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को किस तरह रिजल्ट्स मिलने वाले. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आप लोगों की खूबसूरती के लिए और ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है जनाब. फुल जो है ना ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयारशुदा होने वाला प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों को रिजल्ट देने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है जनाब विटामिन ई बीड्स और विटामिन ई बीड्स जो है ना वो बहुत पावरफुल होते हैं वो की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और साथ साथ सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखेंगे. और जनाब सिर्फ 2 दिनों में वाज़े नतायज के लिए आप डी स्किन वाइटनिंग क्रीम जो है ना ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये नाइट क्रीम है तो जनाब इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने से पहले आप अपना फेस वॉश कीजिएगा. स्किन फेस वॉश से डी स्किन फेस वॉश जो है ये भी आप लोगों को इजीली कहीं से भी मिल जाएगा. तो डी स्किन फेस वॉश जो है ना वो आप अप्लाई कीजिए अपना चेहरा से वॉश कीजिए. आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करनी है.

ओके जी, सो कष्ट साथ साथ हूँ पूरे 3 बजे तक। चमन का गाना लगाइएगा। बिल्कुल जी, चमन का गाना आप सुन रही हैं। पूरे 3 बजे तक मैं भी आपके साथ रहूंगी। और बेबस जरदारी बलोच हमारे साथ है। मोरों से कहते हैं कि मुस्कुराहटों के शहर से आया है कोई, गुलाबों के फूलों से बना है कोई, तेरी गुफ्तगू में मेरी गुफ्तगू में के बाद शायद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है मेरे भाई। सो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और ये है जी, वालेकुम अस्सलाम बाजी, आई एम दुआ बलोच। बाजी, मेरी स्किन पर बहुत सारे काले निशान हैं, प्लीज मुझे बताएं मैं कौन सी क्रीम यूज करूं जो मेरी स्किन को खराब भी ना करे। अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत

आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी स्किन जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए दुआ, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। और साथ में आप डी स्किन का फेस वॉश भी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद है ओ मेरी प्यारी सी और मीठी सी बाजी आरजे सिद्रा, क्या हाल है आपके बताओ। तो तबीयत मुबारक ठीक है, मिल चाहता है। अच्छा भाई बहुत शुक्रिया, आपका दिल जो चाहता है बस उसे चाहने और वैसे भी ये बात है ना कि हमारा दिल जो चाहता है वो सारी चीजें तो पूरी नहीं होती ना, सारी ख्वाहिशात तो अगर पूरी हो जाए तो फिर क्या ही बात है।

0: कहती है कि दिलबर आप ही आज मुझे ये वाला गाना सुनाइएगा, न दुआ थी लगी न दवा थी लगी, कल भी आपने मेरी फरमाइश नहीं लगाई थी, मां कोशिश कदम तांजी फरमाइश लाइंदा सिं ठीक है, न दुआ थी लगी ऐ न वरी दवा थी लगी साधु दे अच्छा चाचा खाले जुने जो मर्सद मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम चाचा छाला तांजो ठीक है अच्छा कश्यप कहती है कि मैं भी आपके साथ साथ हूँ पूरे 3 बजे तक, शमन का गाना लगाइएगा, बिल्कुल जी शमन का गाना आप आप सुन रही हैं पूरी 3 बजे तक मैं भी आपके साथ आत रहूंगी और बेबस जरदारी बलोच हमारे साथ है मोरों से कहते हैं कि मुस्कुराहटों के शहर से आया है कोई, गुलाबों के फूलों से बना है कोई, तेरी गुफ्तगू में ये बात शायद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है मेरे भाई, सो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और ये है जी वालेकुम अस्सलाम बाजी, आई एम दुआ बलोच बाजी, मेरी स्किन पर बहुत सारे काले निशान हैं, प्लीज मुझे बताएं मैं कौन सी क्रीम यूज करूं जो मेरी स्किन को खराब भी ना करे। अच्छा बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मुझसे, तो मैं अभी जो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बता रही थी ना, ये बिल्कुल आपकी जो है ना वो मतलब वाला प्रोडक्ट है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका फार्मूला जो है ना ये बहुत लाइट वेटेड है, इसके अंदर कोई भी इस तरह की चीजें ऐड नहीं की गई है जो कि आपको जल्दी में बस गोरा बना देंगे, जो ऐसे बोलते हैं लोग कि भाई जल्दी में आप लोगों को गोरा बना देंगे, एक रात के इस्तेमाल से आप ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। आप लोगों की स्किन पर सबसे पहले जो होता है ना आपकी स्किन पर ऑयल कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो अगर निशानात वगैरह है तो वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी स्किन जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए है, दुआ आप जरूर ट्राई करके देखिएगा और साथ में आप डी स्किन का फेस वॉश भी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ऐसे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उसके साथ हमारे साथी जी वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान, कीड़ा हाल है तवाजा खुश आयो सफा मजे में प्रोग्राम अडी शौक सा बुधू पया अदी वाइट एज क्रीम असा वठी आया आयो अदी सॉन्ग जरूर आई लाजमी प्ले कजो, सजादुल्ला जमाली, अली हैदर जमाली, अली गुल जमाली, विलेज रईस मोहम्मद हसन जमाली, शफी आबाद नवाबशाह से मरसद माचो। अच्छा भाजे का तमाम गाने जी फरमाइश कया बिल्कुल तमाम जो गानो मो डाउनलोड करी छडियो आए हलाने जी कोशिश करना से गोठ मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू और कहते हैं प्लीज अच्छा गानो लिखो आता हूँ चलो ठीक है ठीक है। कश्यप कहती है आपका शो आज ठीक से नहीं चल रहा, फ्रॉम सकरेंट सिटी में आपकी आवाज कट कट के आ रही है और ठीक करवा दे, शायद थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, तो अभी तक तो मुझे यहाँ पर किसी ने मैसेज करके बोला नहीं है कि आपके यहाँ से मसला है तो आप जरा ठीक करें, लेकिन लगता है कि वो वहीं आपके स्टेशन पर जो है ना उनका थोड़ा सा मसला होगा, जब भी थोड़ा ऐसा नेटवर्क जो ना वो खराब होगा और हमारी आवाज कट कट कर आपको मिलती होगी। और इसी के साथ साथ जो है आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर,
1: मेरा ख्वाब थी जैसे वो भरी मेरे पास थी मेरा राज थी।
0: अच्छा आयरम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां मोहम्मद हारून संदीलो हैं, रऊफ मक्सी का गाना सुनाएं, बिल्कुल जी आपको गाना सुनाएंगे। और ये प्यारी बाजी मां सोचा पयो ना ईद ते पांजे प्यारन दोस्तन के केड़ो गिफ्ट डिजे, पर हाणे मुखे समझ में अची वई आ क्रीम भी गिफ्ट कंदस, वाह वाह वाह वाह। इमरान अली बिरोई हमारे साथ मौजूद हैं जी, थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपने बहुत अच्छी गिफ्ट जो है ना वो सिलेक्ट करी है और आप यकीन जाने जब आप ये गिफ्ट अपने दोस्तों को देंगे ना तो आपके दोस्त बड़े खुश हो जाएंगे, तो अपने दोस्तों को जो है ना वो इस तरह के तोहफे दें जो वो फील करेंगे भाई अगले इंसान को हमारी खूबसूरती का ख्याल है, तो बिल्कुल खूबसूरत रहिए और खूबसूरतियाँ जो है ना वो बांटते भी रहिए, क्योंकि खूबसूरतियाँ बांटना मेरे ख्याल में आसान हो चुकी है।

ओके जनाब, सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरेन मेहराब और माल दिल्ली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज टी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी, ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो ना वो बढ़ती जाए, खूबसूरती ही खूबसूरती हो और आप लोग जो है वो हसीन ही हसीन बनते जाए. ओके जी, सो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को खूबसूरती कैसे मिलती है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की खूबसूरती में 2 रातों के इस्तेमाल के बाद ही जो है ना वाज़े फर्क नजर आना स्टार्ट हो जाएगा. जब 2 रातें आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को ऐसा फील होता है कि वाकई भाई मजेदार तो प्रोडक्ट है. इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयार शुदा है और साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई बीड्स भी मौजूद है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप लोगों को डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, जो कि भाई सीरम के साथ साथ तैयार शुदा है. इसके अंदर भी बहुत सारी मजे मजे की चीजें एड की गई है ताकि आप लोगों की स्किन मॉइस्चराइज रहे, स्मूथ रहे, क्लियर रहे और फ्रेश रहे. तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करके देखेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जो कि और स्किन टाइप के लिए लड़के लड़कियां सभी ट्राई करेंगे. ओके, इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में. तो जो लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है उन तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदी कहा जाता है. उन तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी मौजूद हैं. और साथ साथ फेसबुक बुक पर देखा जाए तो हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों

0: हमीरपुर खास, लाड़काना, सक्कर, गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज, जीए एफएम 88 नेटवर्क।
1: बुक स्टूडियो सीजन 14।

वैसे यार सच में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा. मुझे लग रहा है मैं सोई हुई हूँ.

अच्छा गाना हमेशा जो होता है ना वही वाइब में आता है, वही ट्रेन में आता है जिसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की जाती है. तो इस गाने के साथ साथ भी स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की गई जब भी इस गाने को बड़ी हाइप मिली और ये गाना वाकई इतना ट्रेंडिंग में चला गया. सुन सुनकर मेरे तो कान ही पक गए. अच्छा तो आज हाँ काफी सारे लोगों के कमेंट्स हैं या फिर मैसेजेस हैं वो रह चुके होंगे तो मैं जरा माजरत कर देती हूँ आप लोगों से. अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद जमान भाई बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया है. और ये दर्दी दिल कह रही है कि चंदा मीरपुर खास में वाइट एश एंटी स्किन क्रीम नहीं मिल रही है, पूरा मीरपुर खास घूमी पर नहीं मिला. अरे भाई ये तो बहुत बुरी बात है, चले मीरपुर खास में अवेलेबल कराते हैं. और उसके अलावा सनावला ब्रोही भाई भी हमारे साथ हैं, आपका शो रेडियो पर सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू ऐसे ही सुना कर ऐसे ही मोहब्बतें दिखाया.

आज हाँ काफी सारे लोगों के कमेंट्स हैं या फिर मैसेजेस हैं वो रह चुके होंगे, तो मैं जरा माजरत कर देती हूँ आप लोगों से। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद सलामत साहब सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क
1: लालपत 130 अरब रुपए जो नवा टैक्स लगाने की भी तजवीज़। ज़रियन मूजिब आईएमएफ मिशन जो पाकिस्तानी अख्तियारों से बजट चुकाने की आखिरी ढी है। आईएमएफ सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने का मुतालबो कहते शरह 22.5 8% का घटाए 18% करने की तजवीज़ डी है। एनफोर्समेंट की मद में 778 अरब रुपया रखने जो भी वो है। अमरीका ईरान में जंग बीहर शुरू थियण जा खदशा वधी विया। अमरीका जो बारूद ए हथियारों से भरल जहाज इसराइल मोकलण जो सिलसिलो तेज कर छो। इसराइली मीडिया चयो आहे त अमरीका ईरान ते हमलन की तैयारी कर रो है। हथियारों से भरल कार्गो जहाज इसराइल पहुंची रहा है। पाजरान इनकलाब के अमरीका की बीहर गलती वरजायण से फैसला तो जवाब दियण की धमकी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शिकारसी चयो आहे त ईरान खिलाफ़ नई जहाज जो जवाब फैसला तो तबाह कंदड़ हों। सदर ट्रंप पाकिस्तान के चवण से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोको। सदर ट्रंप इन वक्त में ईरान मसले जो हल सफारतकारी जरिए चाहे तो। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रूबियो पाकिस्तान हो तो प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण से मुआहदे जा इम्कान मौजूद हैं। तेहरान में फैसला केर कर रो है। मुजहरा मौजूद हैं। पाकिस्तानी सालसे जरिए अमरीका से गाल जारी हैं। तेहरान अमरीकी तजवीजन से जवाब दई चुको है। यूएई समेत खिते में मौजूद कें मुल्क से दुश्मनी ना है। ईरानी परदेही वजार के तर्जुमान इस्माइल बाकाई है तो ईरान यूरेनियम के रचाव बाबत पैं हक ता हथ न खण नई मामले से कें गाल ईरान ज जंग के खात्मे मुतालबा वाजे हैं। यूएई के कुछ महीनों के वाक्यन का सबक सीखण घुर्जे। अपने हुरमत बाबत ईरान जो ओमान बिन से राबता जारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो कतर के परदेही मामलों बाबत मुल्क की वजीर से फोन से राबतो। इसहाक डार ए मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी विच में इलाके सूरत हाल से गाल इलाके चैलेंज के मुंह दियण लाय गाल सफारतकारी राबतों से जोर। कतरी वजीर सूरत हाल में पाकिस्तान की तामीरी सफारतकारी किरदार की वाखाण। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ वजीर आजम के बहरिया के तैयार बाबत ब्रीफिंग डी। पाकिस्तान पारा यूएई के एटमी बिजली घर से ड्रोन हमले की मजम्मत। इमारती हुकूमत ए आवाम सहायके जो इजहार परदेही वजारत मूजिब कें भी एटमी बिजली घर के निशान वायण आलमी कानून की संगीन भंजकड़ी है। सिविलियन एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तहफुज हर सूरत में थियण घुर्जे।

को भी सुबुह खुराक की रसद में रंडक बणजी नो सके पंजाब हुकूमत केपी के कणक की फरामी में रंडक विझी रही है। वफाक खामोश है। केपी के वे वजीर सोहेल आफरीदी गवर्नर फैसल करीम कुंडी से गडल प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे केपी के आवाम सभी का महंगो अटो खरीद कर रो है। केपी वफाक के मादुनियात बिजली गैस ली रो है। बदकिस्मती है तो पंजाब लगातार आयन की भंजकड़ी कर रो है।

0: Javed.
1: It's 3:15 p.m.
2: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

0: ठीक है, कोशिश करते हैं सोनी सूरत वाला। अब यही वाली बटरिंग वाले गाने सुनने वाले हैं आप, और ना आपका खाना जो है होटल से आने वाला है, मुझे कुछ कुछ आइडिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश आमदीद कहते हैं असगर भाई आपको। और यकीनन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, टॉपिक के बारे में क्या राय है आपकी?
1: ये टॉपिक के हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब जब भी मुझे गुस्सा आता है मतलब मैं उसी चीज मतलब उस जगह से निकल जाता हूँ बाहर।
0: ये हर लिसनर ये क्यों कह रहा है, मैं वहाँ से उठ के बाहर चले जाता हूँ? चीजें नहीं तोड़ते आप गुस्से में, सामान तो नहीं फेंकते उठाकर?
1: ऐसा नहीं करने देते घर वाले।
0: ये वाओ जबरदस्त, अच्छे हैं आपके घर वाले, बिल्कुल घर वाले मेहनत से चीजें बनाते हैं। चले ठीक है, मेरे सारे लिसनर घर से बाहर चले जाते हैं, मैं हैरान हो रही हूँ सुन सुन के। ठीक हो गया अदा, बहुत शुक्रिया। तमाम लड़काना वालों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, मेहरबानी तव्हांजी तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। जी कौन सा गाना सुनेंगे आप? चले ठीक है, ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, और जनाब मैं प्रोग्राम का स्टार्ट सुफियाना कलाम से ही करती हूँ भाई, गौर से सुनेंगे या तो मुझे सुनेंगे या गाने सुनेंगे, एक वक्त में एक ही चीज हो सकती है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: हाँ
0: जनाब वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? खुश आमदीद कहते हैं अदा जुल्फिकार, आपको शदीद गुस्सा जब आता है क्या करते हैं आप? अच्छा पानी पीते हैं, कोशिश करते हैं खामोश हो जाते हैं, उलट सुलट कुछ भी नहीं कहते?
2: जी नहीं,
0: तो घर से जाने से गुस्सा खत्म हो जाता है फिर? चले ठीक हो गया, बहुत बहुत नादिर बातें पता चल रही हैं आपसे अदा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। ठीक अदा, मेहरबानी तमा जी, थैंक यू। ओके जी, और जनाब मुझे तो हैरानगी हो रही है, ये घर खराब हो रहे हैं गुस्से की वजह से, इतने इतने मामलात बिगाड़ के जाने जा रहे हैं, ये कौन करता है ऐसी हरकतें? मेरे लिसनर तो इतने सीधे हैं बेचारे, जलेबी जैसे सीधे हैं, घर से बाहर चले जाते हैं चुपचाप और घटवत बोलते ही नहीं है, बिल्कुल सुमुम बुकमुन हो जाते हैं, तो ये माहौल कौन खराब कर रहा है हमारे माशरे? जरा आपको भी अगर इस बारे में पता चले मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। और मैं यहाँ पर जो एक शॉर्ट तशहीरी वक्फे की जानिब जाऊंगी, एज ब्रेक का ब्रेकअप हो अगेन तव्हांखे ज्वाइन कंदासीं, स्टे विद अस।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन, वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलंदी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
7: हर चप्पा हर गोशा
8: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
7: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

बाबू सरकार एटीपी में फकीर नो एल्बम पेश करे रहा है जफर देते साहब विश्लेषण न्याज मस्तोई साहब पीरल सोलंगी तकरीबन असा जेके भी शायर मिली जुली कम क्यों था खास शर्मा शाह पुरानी मीरपुर खां यासिन खास के लिए जो मुझो पुराना परस्तार आशिक है ही मजबूर रिबाइया मुझो फेवरेट शायर है मुखे डाढो वणंदो है पांजे बेदर्द महबूब के काई मयार न डींदे छा तो फरमाए उसका नजाकत।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
6: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: 03136165688 आपकी कॉल्स को शामले प्रोग्राम करेंगे. देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, वेलकम कहेंगे आपको. और शदीद गुस्सा जब आपको आता है क्या करती हैं आप?
1: मुझे वैसे गुस्सा कम आता है, मैं मतलब सबर करती हूँ गुस्से में भी, लेकिन जब आता है तो मैं अपनी किताबों वाला वेग उठा कर ना कोई अच्छी सी किताब पढ़ना शुरू कर देती हूँ.
0: अच्छा जी,
1: हमेशा ही करती हूँ.
0: अच्छा, लड़ाई वगैरह नहीं करती, किसी को जो है बुरा भला नहीं कहती?
1: जब मैं आपको पहले हो भी जाती थी, लेकिन अब तो आपकी बात से अच्छा, इतना मस्त तब्दीली आ गई है मेरी जिंदगी में, और अच्छा ही अच्छा होता है. अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए.
0: चले गुड है, ये तो अच्छी बात है.
1: अल्लाह जो भी करते हैं अच्छा करते हैं मेरे लिए,
0: बेशक
1: आपकी बदौलत हुआ.
0: इसमें कोई शक नहीं है, वक्ती तौर पे हम जज्बाती हो रहे होते हैं ना, तो हमारी आंखें नाक कान सब ही बंद हुआ होता है, तो हम नेगेटिव सोच रहे होते
1: हैं. तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, जब दर्द उधर करने की कोशिश करते हैं.
0: अच्छी बात है, खामोशी बेहतर होती है. वक्त का जो आंसर होता है ना वो बहुत बेहतरीन होता है, जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें.
1: आपका शुक्रिया, आपकी बातों से सीखा है बहुत कुछ.
0: चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका यास्मीन, अपना ख्याल रखियेगा. थैंक यू,
1: अल्लाह
0: ओके जी. यार जनाब, ये हमी इरम जान जो है 3 बजे सो गई हैं, तो अच्छी बात है, उन्हें आराम.

0: शमन का सॉन्ग सुनाऊंगी आज मैं एक. हाँ, लेकिन ये वाला नहीं जो आपने कहा है, दूसरा एक सॉन्ग है. थैंक यू, आपका शुक्रिया. मोहसिन अली रोड़ी से सिस्टर सलाम. वालेकुम अस्सलाम, सेम टू यू मोहसिन भाई. बेस्ट नॉलेज, बेस्ट वॉइस, बेस्ट प्रोग्राम और उर्दू सॉन्ग. चलें जी, ये सॉन्ग मैंने क्यू शीट में रख दिया है. ये 4 बजे जो हमारा न्यूज ब्रेक होगा उसके बाद हम जरूर प्ले करेंगे. बहुत शुक्रिया. क्षिति शहदादपुर से मीर अलाउद्दीनो खान तालपुर, आपका शो वेरी नाइस. सलाम आपको. वालेकुम अस्सलाम अदा, सेम टू यू. तवाजी मेहरबानी, तवा ज्वाइन कयो असाके. थैंक यू. चले जी, एक और कॉल शामले प्रोग्राम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: वेलकम कहेंगे. कौन बात कर रहा है?
1: निदा बात कर रही हूँ.
0: निदा, शदीद गुस्से में क्या करती है निदा?
1: Oh my God. पहली बार गुस्सा.
0: अच्छा, फिर
1: उसके बाद अम्मी ने ऐसी क्लास लगाई कि फिर सबर आ गया.
0: ये जी अम्मी, अम्मी खुश रहो. अम्मी की क्लास मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ. मेरी भी लगती है, मेरा ज्यादातर टाइम मेरी अम्मा के साथ ही गुजरता है. अम्मा की जो ठंडी वाली इज्जत अफजाई होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है. निदा गुड नाइट. आपको बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब ब्रेक टाइम हो रहा है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं. थैंक यू. ओके जी, अल्लाह हाफिज. हमारी जो माए है ना, अच्छा ये मजे की बात है, जब तक अम्मा सुनाए नाना तो खाने भी हजम नहीं होते हैं औलाद के. ये बड़ा ही प्यार वाला माँ का और औलाद का जो रिश्ता होता है बेस्ट होता है. एनीवे जनाब, बातों के सिलसिले को यहाँ ब्रेक देते हैं, ब्रेक पे जाते हैं. ब्रेक का पॉइंट अगेन हमारा फिर से साथ साथ.
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
4: It's 4 PM. This time check is brought to you by.
5: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन्दी आहे तो सेहत नसलन ताई हलन्दी आहे. ही पेगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो.
6: GAFM 88
2: सिंध की आवाज.
7: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ. पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है. हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं. इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए.
8: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. प्राइस 680 कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान पारां यूएई जे एटमी बिजली घर ते ड्रोन हमले जी मज़म्मत इमारती हुकूमत ऐं अवाम सां हिकु जो इज़हार परडे॒ही वज़ारत मूजिब कंहिं बि एटमी बिजली घर खे निशान बणाइण आलमी कानून जी संगी भञकड़ी आहे। सिविलन एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तहफ़ुज़ हर सूरत में थियणु घुर्जे। सिंध असेंबली मां घरेलू मुलाज़मनि जे तहफ़ुज़ वारो बिल यकराउ सां मंज़ूर। बिल पार्लियामेंटी मामलनि जे वज़ीर पेश कयो। शर्जीना मेमण सवालनि जा जवाब ॾींदे चयो त सिंध सरकार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ते 500 खां वधीक बसूं मुख़्तलिफ़ रूट्सनि ते हली रहियूं आहिनि। आबाशी वज़ीर जाम ख़ान शौरी चयो त बरसातनि सबबु ईंदड़ बोड खे मुंहुं ॾियण लाइ पाणी जे कुदरती वहिकरनि तां कब्ज़ा हटाए रहिया आहियूं। घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार चयो त हैदराबाद ऐं कराची में गुटको ठही रहियो आहे। कार्रवाइयूं बि जारी आहिनि। को बि सूबो खुराक जी रसद में रंडक बणिजी नथो सघे। पंजाब हुकूमत के पी खे कणक जी फराहम में रंडक विझी रही आहे। वफ़ाक बि ख़ामोश आहे। के पी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी गवर्नर फैसल करीम कुंडी सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त के पी जे अवाम सभिनी खां महांगो अटो ख़रीद करे रहियो आहे। के पी वफ़ाक़े खे मदनियात बिजली गैस ॾेई रहियो आहे। बदकिस्मती आहे त पंजाब लॻातार आइन जी भञकड़ी करे रहियो आहे।

थीन क्वीन एंड मुल पिंकी केतरा भेरा मुल्क का बाहर वही पुलिस तफसील रद्द करे वरता। पिंकी 25 दिसंबर 2018 ते पाकू वही हुई। पिंकी जो मुड़ सगुड़ो इंस्पेक्टर राणा अक्रम भेरा पाकू वे हो। पुलिस मौजूब राणा अक्रम पेरियों भेरो पिंकी साथी किरण के पकड़ियो हो। मुबैना तौर से 5 करोड़ ए ब गाड़ियों वी बिन्हीं के छड़े दिनों हो। कुकीन क्वीन अनमोल पिंकी जेल में कायम अदालत में पेश। पुलिस रिमांड की सदा अदालत फैसलो महफूज कर वरतो। रादड़ भरसा जवाबदार नारी के कारें इल्जाम हेठ गोलियों हणी कतल कर छो। घोट नारी में अकबर चांडियो कारें इल्जाम हेठ बीहंसर ने सूमल चांडियो के कतल कर छो। इतलात पुलिस वाके वाले हंध पहुंची नारी जो लाश अस्पताल मुंतकिल कर। नारी जो भाव ए मामो गिरफ्तार। बारह वर्षा पुराने तकरार तां औरत समेत बजना कतल। हथियारबंद अदालत वेंद्रा गोठाने शान चांडियो के कतल कर छो। पलाद में मकतूल के वारसों के इल्जाम हेठ आयल धुर के घर से हमलो। एक औरत मार गई भी जख्मी। मास्टर के लाड़े वट हथियारबंद फायरिंग कर शान चांडियो के कतल कर। मकतूल के धुर पलाद में इल्जाम हेठ आयल धुर के गोट गाजी खान मर्कन से हमलो कर। औरत बम भी चांडियो मार गई। पुलिस चवण है धुरन में पुराने तकरार का वाको पेश आयो है। वधिक जांच जारी है। सिंधड़ी भरसा पसंद प्रणेता नारी के वारसन पारा पलान में अगवा कल टिन नार पुलिस बाजियाब कराए न सी। गोठ हाजी अबूबकर जुड़े जो वासन 16 साल की रिहाना 18 वर की आसिया 10 वर की नाजिया के पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम। पुलिस के जवाब के घर से चढ़ाई 3 जणा गिरफ्तार। वाक्य जो केस दाखिल न थो। कोटडी के भरसा हथियारबंदन हताफ फुर्म दौरान मजम्मत नौजवान कतल। वारसन जो लाश रखी धरणो। मिश्री शाह स्टाफ वट फुर दौरान मजम्मत से हथियारबंदन गुलाम मुस्तफा बुकटी के कतल कर। वाके बाद मकतूल के वारसन ए बुकटी बाजी जो लाश रखी पुराने कौमी शाहरा धरणो हणियो। जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो। प्रणव मोहम्मद खान में पंचायत केस में गिरफ्तार। अगूणे बरतरफ सिविल जज जायद हुसैन मुगेरी समेत 4 जणन की जमानत मंजूर। बरतरफ सिविल जज जायद हुसैन मुगेरी साजिद लाशारी बिलावल सुमरो मुनीर मलाज जमानत मंजूर कई वही। वकील अगूणे सिविल जज की कराची में बरतरफी बाबत इंक्वायरी हलंदड़ है। पुलिस बिना कें सबब पंचायत के केस में केस गिरफ्तार कर जवाबदार जाहिर किया है। पुलिस कुछ ढी अग अगूणे जज समेत बेन के पंचायत केस में गिरफ्तार किया हो। सिंध जरई यूनिवर्सिटी टंडो जाम में शागिर्दन गार्ड्स विच में झेड़ो। झेड़े दौरान गोलियों लगन सबब 3 शागिर्द जख्मी। शागिर्द समीर मलिक शमशेद इंडड़ कामरान मलिक हैदराबाद मुंतकिल। शागिर्दन जो वीसी ऑफिस आरो धरणो। शागिर्दन मूजिब आर्टिकल शक गार्डन में तस्वीरों गिरण तां गार्ड प्राइवेट मानू घुराए गोलियों हलायूं आहिन। सखर में बासण पारा गोट की वासन नारी के मुबैना इज्तमाही लजलट जो निशानो बनाए। वीडियो रिकॉर्ड करण जो इंकशाफ। मुतासर नारी जो वालदेन समेत जवाबदार की गिरफ्तारी। इंसाफ लाए एहतजाज। नारी इल्जाम लगाया तो वडेरे मुश्ताक चाचर निसार अमीर जमीर अगवा कर लजलट जो निशानो बनाया। जवाबदार 3 मई के नशे की हालत में लजलट कर वीडियो रिकॉर्ड कई। जवाबदार मुझे वालदेन के हथियार के जोर से यकमान बनाए सदन सामू लज लुटी। पुलिस जवाबदार खिलाफ कार्रवाई नी करे। हैदराबाद में तारीखी विरसे पक्के किले के भर में गैर कानूनी कर कोशिशों तेज। शख्स चालान जारी करण लगा। पक्की कार रोड तई हद जबरतो। दुकानदार पारा मालकी जो रिकॉर्ड हण की दावा।

सकरण में एसयूपी पारा बदनर बदमनी खिलाफ रैली धरणों काकुनन मीडिया सेंटर चौक का रैली कड़ी मुख्तियार कर ऑफिस जो गेट अगियां धरणों हयों मुजाहिरीन पारा बदमनी खिलाफ नारेबाजी अमन बहाल करण जो मुतालबो अगवणन जो पुलिस अमन बहाल करण में नाकाम वही है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी बादी बवासीर, इन्हन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई, बरोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधिक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-768।
3: कमी गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी। महिरबानी करे एहतियाती उपाउ वठो। बिना ज़रूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो। ॿाहिरि निकिरण वक़्तु कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ लाइ पेश कयो वियो।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक

0: कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
7: सुनते रहो GFM 90.8।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

अमेरिका ईरान में जंग बीहर शुरू थियण जा खदशा वधी विया। अमेरिका जो बारूद ए हथियारन सा भरियल जहाज इसराइल मोकलण जो सिलसिलो तेज करे छो। इसराइली मीडिया चयो आए त अमेरिका ईरान ते हमलन की तैयारी करे रो है। हथियारन सा भरियल कार्गो जहाज इसराइल पहुंची रहा है। पास्तार इनकलाब के अमरीका के बीहर गलती वरजण से फैसला तो जवाब दियण की धमकी। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारजी चयो है त ईरान खिलाफ नई जारियत जो जवाब फैसला तो है तबाह कदड़ हों। सदर ट्रंप पाकिस्तान के चवण से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोको। सदर ट्रंप इन वक्त भी ईरान मसले जो हल सिफारतकारी जरिए चाहे तो। अमरीकी पढ़े वजीर मार्को रोबियो है त पाकिस्तान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण से मुआदे जहा इम्कान मौजूद हैं। तेहरान में फैसला केर कर रो है मुंजारा मौजूद हैं। पाकिस्तानी सालिसी जरिए अमरीका से गाल जारी है। तेहरान अमरीकी तजवीजन से जवाब दे चुको है। यूएई समेत खिते में मौजूद कें मुल्क से दुश्मनी ना है। ईरानी पढ़ी वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकई है त ईरान यूरेनियम के रचाव बाबत पेंे हक ता हथ न खड़ो नई मामले से कें सा गाल ईरान जहा जंग के खात्मे लाय मुतालबा वाजह है। यूएई के कुछ महीनों के वाक्य का सबक सीखण घुर्जे। आबना अरमुस बाबत ईरान जहा उमान बेन सा रबता जारी है।

पाकिस्तान में मुकर्रर सऊदी सफीर नौ बिन सईद जी नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात विरफ़ा लगापन समेत खिते की सूरतहाल से गाल मौजूदा सूरतहाल में थींदड़ अखबाराई भी गौर किया वो सऊदी सफीर पारा खिते में अमन के क़याम लाए पाकिस्तानी कोशिशन की वाखाण पाकिस्तान पारा यूएई के एटमी घर बिजली घर से ड्रोन हमले की मजम्मत इमाराती हुकूमत अवाम सहायक जो इजहार पर नई वजारत मौजिब कें भी एटमी बिजली घर के निशानों बढ़ आलमी कानून की संगीन बदकड़ी है सिविलियन एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तहफुज हर सूरत में थे घुर्जे

पाकिस्तान का सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने जो मुतालबो 430 अरब रुपये का नवा टैक्स लगाने की भी तजवीज दई छी जरियन मुजिब आई एम एफ एशन जो पाकिस्तान अख्तियार बजट से गालियन की अज आखिरी ढी है आई एम एफ सेल्स टैक्स से छूट खत्म करने जो मुतालबो कदे शराब 22.5-8% मां घटाए 18% करने की तजवीज दिनी है इन्फोर्समेंट की मत में भी 778 अरब रुपया रखने जो है सिंध असेंबली में घरेलू मुलाजमन के तहफ़ वो बिल यकराए से मंजूर बिल पार्लियामानी मामलों के वजीर पेश कियो शजीरी नाम मेवण सवालों का जवाब डींदे सिंध सरकार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से 500 का बसों मुख्तलिफ रूट्स से हली रही हैं आबपाशी वजीर जामपान छोरे बरसात सबब ईंदड़ बोर्ड के बू डण पानी के कुदरती वकरन का कब्जा हटाए रहा हूं घरू वजीर जाल हसन अंजा हैदराबाद और कराची में गुटको टही रो है कार्रवाई भी जारी है सुबह खुराक की रसद में रंडक बढ़ी न तो सके पंजाब हुकूमत केपी के कणक की फरामी में रंडक विझी रही है वफाक भी खामोश है केपी के वे वजीर सहेल अफरीदी गवर्नर फैसल करीम कुंडी से गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केपी जो अवाम सभी का महंगो अटो खरीद कर रो है केपी वफाक के मादनियात बिजली और गैस दई रो है बदकिस्मती है तो पंजाब लगातार आइन की भजकड़ी कर रो है हुकेन क्वीन अनमोल उठ पिंकी केतरा भेरा मुल्क का बाहर वही पुलिस तफसील हथ कर वरता पिंकी 25 दिसंबर 2018 से बाकू वही हुई पिंकी जो मुड़स अगौणा इंस्पेक्टर राना अक्रम भी बेरा बाकू वो हो पुलिस मुजिब राना अक्रम पेरों भेरों पिंकी और संदस साथी किरण के पकड़ो हो मुबैना तौर 5 करोड़ और 2 गाड़ियों वी बिन्हीं के छे दिनों हो हुकेन क्वीन अनमोल उठ पिंकी जेल में कायम अदालत में पेश पुलिस के रिमांड की सदा अदालत फैसलो महफूज कर वरतो

रातण भरसां जवाबदार सोट नारी के कारण समेत गोलियों हणी कतल कर छो घोट नारी में अकबर चांडियो कारण समेत 20 साल की सूमल चांडियो के कतल कर छो इतलात पुलिस वाक्य वारे पहुंची नारी जो लाश अस्पताल मुंतकिल कर छो नारी जो भाव ए मामो गिरफ्तार वारे भरसा पुरानी तकरारन ता औरत समेत बजणा कतल हथियारबंदन अदालत वेंदड़ गोठाणे शाहन चांडियो के कतल गयो प्लान में मकतूल जे वारिसन जो इल्ज़ाम हेठ आयल धुर जे घरन ते हमलो एक औरत मारजी वई बी जख्मी मास्तर जे लाड़े वट हथियारबंदन फायरिंग करे शाहन चांडियो के कतल गयो मकतूल जे धुर प्लान में इल्ज़ाम हेठ आयल धुर जे गोठ गाज़ी खान मरखंड ते हमलो कयो औरत बम्बी चांडियो मारजी वई पुलिस जो चवण है धुरियन में पुरानी तकरार ता वाक्य पेश आयो है जांच जारी है।

सिंधड़ी भरसा पसंद पड़े था नारी जे बारे सन पारा प्लान में अगवा कल तीन नारियन के पुलिस बाजियाब कराए न सकी गोठ हाजी अबू बकर जोड़े जो वासण 16 साल की रिहाना 18 वरियन की आसिया ए 10 वरियन की नाजिया के पुलिस बाजियाब कर नाकाम पुलिस जवाबदार घर से चढ़ाई टे जणा गिरफ्तार वाक्य जो केस दाखिल न थोड़ा।

0: अमरीकी रियासत डाओ में मशक़न दौरान अमरीकी नेवी जहाज बचा सकराइजी वा पायलट पान के इंजेक्ट करे बचाए वरतो बे जहाज बई जहाज मुकम्मल तौर ते तबाह थी वा
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ए बादी बवासीर इनन सबन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 6 वगे ताई परोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-763।
6: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वगे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
7: It's 6:15 PM.
8: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
10: GFM 90.8।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो
0: बाबा, इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तनि खां बचा। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
8: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के चवण से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोको है। सदर ट्रंप इन वक्त भी ईरान मसले जो हल सफारतकारी जरिए चाहे तो। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रोबियो चाहे तो पाकिस्तान चयो हो तो प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहदे जहा इम्कान मौजूद हैं। तेहरान में फैसला केर कर रो है, मुंझारा मौजूद हैं।

सालिसी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तेहरान अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत ख़िते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी न आहे। ईरानी पेडई वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे रचाव बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो, नई मामले ते कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जे वाक़ियुनि खां सबक़ सिखणु घुर्जे। अबना हुर्मुज़ बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि।

0: पाकिस्तान में मुकरर सऊदी सफीर नौफ बिन सईद जी नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात बेतरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल मौजूदा सूरत हाल में थींदड़ अकबराई से भी गौर किया वो सऊदी सफीर पारा खिते में अमन अमान की क्याम लाए पाकिस्तानी कोशिश की वाखाण
1: ड्रोन हमले की मुज़म्मत इमाराती हुकूमत अवाम सहायके जो इज़हार बड़े वजारत मूजिब कें भी एटमी बिजली घर के निशानों बण आलमी कानून की संगीन बदकड़ी है सिविलियन एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तहफुज हर सूरत में थियण घुर्ज
0: आईएमएफ जो पाकिस्तान का सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने जो मुतालबो 430 अरब रुपये जहा नवा टैक्स लगाने की भी तजवीज दई छी जरियन मूजिब आईएमएफ मिशन जो पाकिस्तानी अख्तियार बजट से गाल आखिरी डी है आईएमएफ सेल्स टैक्स से छूट खत्म करने जो मुतालबो कदे शहर 22.8% में घटाए 18% कर तजवीज दई छी एनफोर्समेंट के मद में 778 अरब रुपया रखने

0: सिंध असेंबली में घरेलू मुलाजमन के तहफ़ वारा बिल यकरार से मंजूर। बिल पार्लियामानी मामलों के वजीर पेश कियो। शजीलना मेमण सवाल जा जवाब डींदे चयो त सिंध सरकार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से 500 का वधीक बसूं मुख्तलिफ रूट से कुदरती वकरण तां कब्जा हटाए रहा है। घरू वजीर जाल सरंजा चयो त हैदराबाद और कराची में गुट है कार्रवाई भी जारी है।
1: को भी सूबो खुराक की रसद में रंडक बणजी नथो सके। पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के कणक की फरहमी में रंडक विझी रही है। वफाक भी खामोश बणल है। खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सोहेल आफरीदी गवर्नर फैसल करीम कुंडी से गडल प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे है तो खैबर पख्तूनख्वा जो आवाम सभी का महंगो अटो खरीद कर रो है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक के मायदनियात बिजली ए गैस डेई रो है। बदकिस्मती है तो पंजाब लगातार आइन की भंज कड़ी कर रो है।
0: क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केतरा भेरा मुल्क का बाहर वही पुलिस तफसीलत करे वरता। पिंकी 25 दिसंबर 2018 ते पाकू वही हुई। पिंकी जो मुड़स अगोणो इंस्पेक्टर राना अकरम भी भेरा पाकू वो हो। पुलिस मूजिब राना अकरम पेरों भेरों पिंकी ए संदस साथी किरण के पकड़ो हो। मुबैना तौर 5 करोड़ ए गाड़ियों वी बिन्नी के छे दिनों हो। कुकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी जेल में कायम अदालत में पेश। पुलिस रिमांड की इस्तदा अदालत 4 दिन जो रिमांड मंजूर करे वरतों।

0: रादण वेझो जवाबदार सौट नारी के कारा इल्ज़ाम हेठ गोलियूं हणी कतल करे छॾियो। ॻोठ अकबर चांडियो कारा इल्ज़ाम हेठ 20 वरन जे सोमल चांडियो खे कतल कयो। इतलात पुलिस वाके वारे हंधि पहुची नारी जो लाश अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। नारी जो भाउ ऐं मामो गिरफ़्तार।
1: पुराणी तकरारनि तां औरत समेत ॿ ॼणा क़तल। हथियारबंदनि अदालत वेंदड़ ॻोठाणे शाहुनि चांडियो खे क़तल कयो। प्लान में मक़तूल जे वारिसनि जो इल्ज़ाम हेठि आयल धुर जे घरनि ते हमिलो। हिकु औरत मारिजी वई, ॿी ज़ख़्मी। मास्तर जी लाड़ी वटि हथियारबंदनि फायरिंग करे शाहुनि चांडियो खे क़तल कयो। मक़तूल जे धुर प्लान में इल्ज़ाम हेठि आयल धुर जे घोट गाज़ी ख़ान मरखंड ते हमिलो कयो। औरत मारिजी वई। पुलिस जो चवणु आहे त धुरियुनि में पुराणी तकरार तां वाकियो पेश आयो आहे। वधीक जांच जारी आहे।
0: सिंधुड़ी वेझो पसंदि पढ़ण तां नारी जे वारसनि पारां प्लान में अगवा कयल टिनि नारियुनि खे पुलिस बाज़ियाब कराए न सघी। ॻोठ हाजी अबू बकर जोड़े जो वासण 16 वरनि जी रिहाना, 18 वरनि जी आसिया ऐं 10 वरनि जी नाज़िया खे पुलिस बाज़ियाब करण में मुकमल तौर ते नाकाम बणियल। पुलिस जे जवाबदारनि जे घरनि ते बि चढ़ाई। 3 ॼणा हिरासत में वरिता विया। वाके जो केस दाख़िल न थियो।

कोटवासी डॉक्टर शाहनवाज कुंबर कतल केस में नामजद अगूणे डीआईजी जावेद जिस्कानी की अबूरी जमानत मंजूर। केतरन ही महीनों का केस में रूपोश रहदड़ डीआईजी जावेद जिस्कानी सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच मीरपुर खास आडो पेश थो। सिंध हाईकोर्ट जावेद जिस्कानी के 10 दिन लाए अबूरी जमानत मंजूर कई। उमरकोट वासी डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के 20 महीना अग पुलिस कूड़े मुकाबले में मारे हुए।

0: सिंध ज़री यूनिवर्सिटी टंडो जाम में शागिर्दन ए गार्ड्स विच में जेड़ो जेड़े दौरान गोलियों लगने सबब टे शागिर्द जख्मी। शागिर्द समीर मलिक शमशाद इंडड़ ए कामरान मलिक हैदराबाद मुंतकिल। शागिर्दन जो वीसी ऑफिस आदो धरनो। शागिर्दन मूजिब हॉर्टिकल्चर गार्डन में तस्वीरों कढ़ने तां गार्ड प्राइवेट मानू घुराए गोलियों हलायूं आहिन।
1: वासन पारा घोटकी वासन नारी के मुबैना इज्तमाही लजा लुट जो निशानो बनाए वीडियो रिकॉर्ड करण जो इंकशाफ। मुतासिर नारी जो वालदेन समेत जवाबदारन की गिरफ्तारी ए इंसाफ लाए एहतजाज। नारी इल्ज़ाम लगायो त वडेरे मुश्ताक चाचर निसार अमीर ए जमीर अगवा करे लजा लुट जो निशानो बनायो। जवाबदारन टे वही नशे की हालत में लजा लुट करे वीडियो रिकॉर्ड कई। जवाबदारन मुझे वालदेन के हथियार के जोर से इस्तेमाल बनाए सदन सामू लज लुट लुटी। पुलिस जवाबदार खिलाफ कार्रवाई नी करे।
0: हैदराबाद में तारीखी विरसे पके किले के भर में गैर कानूनी दुकान के रेगुलर करने लाए कोशिशू तेज। 26 दुकान के नुसरत बाजार जो नालो दई रेगुलर कराने की कोशिश। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लैंड डिपार्टमेंट जा अमलदार मुबैना रिश्वत एवज चालान जारी करण लगा। पके किले के मुख्य गेट का कदम गाह मौला अली रोड ताई हद दखलियों जानायल दुकान रेगुलर करण लाए चालान जारी किया व्या। केटीएन न्यूज जारी थियल चालान जो रिकॉर्ड हथ करे वरतो। दुकानदारन पारा मालिकी जो रिकॉर्ड होने की दावा।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
4: किरु शोक हो ना तो के मुझे रो पाए तैयार थेण जो
5: तू आज भी हसी
4: थोरो पाए तो देखार
6: ना मां मां थकी पई आ
4: ना पुट ही थकना है रत जी कमी है दिस्ता केडो ना फिको थी हुआ है तुझो चेहरो
6: छा कया मां
4: 6 महीना थी वैन पुट तू उम्मीद साही अई हाने वनी तो शुरू कया है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाइंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ सी उनन साई त खून ठांदो है इनसा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बा रखे पुट हाने तू मां थण वाली आही पंहिंजो ख़्यालु रखणु ॿियनि खां बि वधीक ज़रूरी आहे।
5: मेरी बात तेरे ज़िम्मे अब ये तुझको निभानी है।
7: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
8: हैरतअंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
9: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। महिरबानी करे एहतियाती उपाउ वठो। बिना ज़रूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
10: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
11: सुनते रहो GFM 90.8।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Hello, Varna. खबर ना मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला सुन दिया है
3: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी बार जी मंझन जी मानी डिठिया है
4: सो

0: चेने तो ताऊ ने केरोस अंडा खराय जो मंजन जी मानी में सूफ़ दी जो तो जियो स्कूल में मुहागुर थकीला थकीला ना हो जे
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिज़ाई जुज़न जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखने जी सलाहियत में रंडक बणजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमंदी रहिया पहरियों भेरो मा थी रहिया ही ना मुझो भी यो ही हाल हो।
3: खबर ना है तो आही सब कुछ किया क्यों नानी। मा ता एतरो थकी थी पवा छा कयो हो तवा।

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99 84

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूँगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
2: सिंध के माथे का झूमर,
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: भारत पहिरीं शिकस्त खां ॿाहिरि नाहे निकितो, ॿीहर ललकारियो त भारत जी जाग्राफ़ी तब्दील करे खेसि तारीख़ जो हिसो बणाए छॾींदासीं। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल में ॿीहर जंग जो इम्कान नाहे, ॿई मुल्क जंग नथा चाहिनि। 28 आइनी तरमीम ज़रिए 18 तरमीम खे ख़तम करण वारियूं ॻाल्हियूं बि शोशो आहिनि।
1: सूरतहाल गंभीर ऐं बदमनी उरूज ते आहे। केपी ऐं बलोचिस्तान में सूरतहाल बग़ावत जहिड़ी ऐं सिंध में धाड़ियल जो राज आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे JUI सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त हुकमरान अमन अमान बाबति संजीदा न आहिनि। हू जॾहिं चाहिनि आइन जी शिकल बिगाड़े छॾनि था। एहतजाज ते मुल्क जा दुश्मन सॾियो वञे थो।

सिंध में करप्शन चोट चढ़ियल ऐं अवाम बदहाल थी वियो आहे। अमुन अमान जी सूरतहाल बि संगीन थी वई आहे। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ते जी डी अॻवान सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी ऐं ॿियनि चयो त सालनि खां सिंध में हलंदड़ सिस्टम सूबे खे तबाह करे छॾियो आहे। मुतबादल क़यादत जी ज़रूरत आहे।

0: कश्मोर जिले में आबपाशी खातों गैर फाल 80 का शाखों के काटी नती सगी जरियन मुझे बिगारी फीडर तंगवाणी शाख चिमनी शाख उन्नर शाख वोसपुर माइनस समेत बेन शाखन जा कपर कमजोर थी व्या मरम्मती कम लाए टेंडर जारी थे बावजूद साइट से को भी कम शुरू न थो कपड़ पाल जो करोड़े रुपये जो मनसूबो रुगो फाइलन तई महदूद रहने जो इंकशाफ इरीगेशन इख्तियार कपड़ पाल के कम बाबत मौकिफ दियण बदरा अणजाई जाहिर कर छी शाखों ए वाहन की खाटी न थियण कर इलाके में पानी की सख्त खोट जरई फसल के नुकसान जो खतरो 2018 का पोए शाखों ए वाहन की मद में ईंदड़ करोड़े रुपये की बजट कागजन तई महदूद पानी की खोट खिलाफ आबादगार इलाके वासियन पारा सख्त गणती जो इजहार इख्तियार फौरी नोटिस वी करप्ट ऑफिसर खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते 0327-99-84-763।
4: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
5: GFM 90.8।

0: السلام علیکم جی، سکرن نواب شاہ ایف ایم 90.8 جلائیو اسٹوڈیو میں پروگرام صحت جو راز ہومیوپیتھک سان سان کرے حاضر خدمت ماں ماں جو پینجو میزبان سلیم احمد سرگانی موجو آواز ہواؤں جی لہرن وسیلے جتے جتے پہنچے پیو گوٹھن واہن وستن یا کوئی ڈرائیونگ دوران یا کوئی کمکار دوران اسا کے بدھی رہو ہے انہیں سبرن بدھندڑن کے مو طرفا سکھ محبت بھرو سلام قبول پوے سامعین اواں جا کیڑا حال ہیں امید ہے تواں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوندا اساں جو کھوڑ سارے دعاؤں اواں جے لا تو جتھے بجو شاد آباد ہو جو سدائیں کھلندا مسکرائیندر ہو آمین یا رب العالمین حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک ہاں کئی بھی بیماری کا مایوس نہ تھو علاج ڈاکٹر کندو شفا اللہ جی ذات دی سکرن جو مشہور معروف ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشین سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ سے وابستہ ہیں ڈاکٹر صاحب ماہر امراض نک کنگلو پرانو نزل و نچو جوڑن جو سور متھے جو سور مادے جی السر مادے جلن دلی جو ودن جگر جا مرض شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بھی بغیر آپریشن جے علاج کے ونے تھو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش پھرڑیو بارن میں قد جو نہ ودھن مردن توڑے عورتن میں وزن جو نہ ودھن انہن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کے ونے تھو ڈاکٹر صاحب روزانو صبح 9 بجے کھاں شام 6 بجے تائیں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن میں مریضن جو علاج کندا ہیں جمعہ صبح 9 کا مجد 12 بجے تائیں باقی عام ڈین میں ڈاکٹر صاحب جی ٹائمنگ صبح جو 9 کا شام 6 بجے تھی ہے ڈاکٹر صاحب جو موبائل نمبر 02-27-89-84-7-6-3 سامنے ڈاکٹر صاحب طرف ہلوں تھا ان سے گال بول کے ان کا ٹاپک جو حوالے سے معلومات وٹھو تھا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب اجو کو پنجو ٹاپک کیڑو ہے سر
1: اجو کو پنجو ٹاپک ہے بواسیر کے حوالے سے اجو کے بارے میں گال بول کرنا سی
0: ڈاکٹر صاحب کال وٹھو تھا اس سے کیر گڈ موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم
2: ہائے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: سر ڈاکٹر صاحب کا حال ہے
0: جی سلیم گلائے پہ ڈاکٹر بدھن پہ کیر گلائے پہ کتھا کھا
2: سائی ماں بات چیت کو گلایا باندھی شہر کا
0: اچھا باندھی شہر کا تو کر کے جی اچھا سوال ہے
2: جی سر
0: سوال چاہے ڈاکٹر صاحب لا
2: سر امڑا سا جی طبیعت صحیح نہ تھی رہے
0: اچھا اما کے چھا تکلیف ہے
2: امڑ وڑی کے تکلیف ہے کہ بلڈ پریشر ودھی دو نے گھنو
0: اچھا
2: جی جی
0: کترو تو رہے اما جو بلڈ پریشر
2: جی تمام گھنو تھی دو نے بس صفا جو کون گھنو تھی دونی
0: اما جی عمر گھنی ہے
2: عمر تقریبا تھی 50-60 جی
0: چلو ٹھیک ہے تو ایف ایم جو ڈاکٹر صاحب تو کے بدائن تھا
2: جی
0: جی ڈاکٹر صاحب
1: سبنی کا پہری اواں کے ویلکم چوں تھا پروگرام صحت جو راز ہومیوپیتھک سان ائی گڈو گڈ اواں کے مبارک دیوں تھا صلح جو چنڈ ڈسن میں اچھی ویا ہے ان جی ان کے علاوہ جو اج کو پروگرام ہے اساں جو صحت جو راز ہومیوپیتھک سان تو ان میں اساں جو جو ٹاپک ہے وہ ہے بواسیر خونی بادی بنن کے بارے میں گال بول کرداسی آخر یہ جو سوال ہے تو پہ سوال جو جواب دے تا چھوں تو ان کا بعد میں پان مخاطب تھی سائیں اما جو بلڈ پریشر ودھن کی کچھ وجوہات ضرور ہوندیوں ہیں دسو عمر کتری بھی ہوجائے بلڈ پریشر ودھے پیو پویاں کا نہ کا راز ضرور ہوندا ہیں اساں جی ہومیوپیتھک جکا ٹریٹمنٹ ہے اساں جو ہومیوپیتھک علاج کندا ہوں تو ان میں انہی پویاں جکا راز ہوندا ہیں انہن کے ڈسی کرے علاج کندا ہوں ब्लड प्रेशर या का भी बीमारी थे पी उन वजह है जी अवं के जी तकलीफ थे पी ब्लड प्रेशर की लूण जो इस्तेमाल घट कर छो बेहतर बाकी सोच गणतियों परेशानियों दुख सदमा घबराहट गागाल बुद्धि यकदम घबराहट थियण यह सब कंडीशनू आन दिल दिमाग की कमजोरी उनके करे निंड आराम कोने को ब्लड प्रेशर वधे पियो या दिमाग कमजोरी में गुर्दन ते असरात अन गुर्दा सही कोनन के ब्लड प्रेशर वधे पियो तो ये गुर्दन जो इलाज थींदो ब्लड प्रेशर सही थी पवंदो पेट से भर्ती गैस कब्जी थे पई उन के करे ब्लड प्रेशर वधे पियो तो उन जो इलाज कबो ब्लड प्रेशर पान जगह ते वापस थी पवंदो तो असा वट होम्योपैथिक जे अलहमदुल्ला असा इलाज कयूं पिया तो उनमें असि सभी का पहरी किरदार इो ही तो बीमारी के हटाए करे असल में अंदर में तकलीफ छा है छेजे करे बीमारी पैदा थे पई उनके दिसी करे उनको इलाज कयूं बीमारी ऑटोमेटिक गुम थी वन तो इन करे अवां जे अड़े तरीके से इलाज कराना चाहो था अवां सुभाणे क्लिनिक खुले होंदी सुबह नवे का शाम छह वगे ताणी अवां अची सको था इलाज कराए सको था बांदी मां मुखे याद आ तो असां वट अमरा इंदो हो अमरा इंदो जो गाड़ी कोच थींदी सुबुह जो वरी अढ़ाई टी बजे कोच हली वेंदी उनमें वापसी अची वेंदो कोच में भी अची सको था सेकंड में अची वे तो राबत रखो तक खबर पे कड़ी जगह से अचो असो क्लिनिक जो एड्रेस हाँ है स्टेशन रोड सकरण से कें भी चवंद पार कर घिटी किथे सहले नमू से पोची वा
0: डॉक्टर साहब कॉल वो था अस्सलाम वालेकुम
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम बाबा केर किथा खा
3: आउ फरान अली कोसो तो गला सकरण खा
0: जी बाबा छा सवाल है
3: सवाला एक मुझे रोजाना वात पचन वा हर गर्मी में जुबान पची थी पए
0: अच्छा जुबान पे पचे थी वात पचे तो
3: जी
0: ठीक है ठीक है एफएम पे तो डॉक्टर साहब बताएं था डॉक्टर साहब गर्मी में अधड़े जो को वात में जुबान पे बई पचन था
1: सही गर्मी में वात जुबान पचे पियो इन में अवां एहतियात कियो तो बाहर जी जका शूं जी तरल शूं मिर्च मसाला आरी शूं देग जा चावर वगैरह इन्हें जो इस्तेमाल न कियो पानी वगैरह जूस वगैरह जो इस्तेमाल घणो कियो तो जी मादे में गर्माइश थी है तो वात पचन शुरू थी तो वे केडी केडी केस अड़ा मूँ डिठा पे लाइफ में तो मादे की गर्माइश कर सिर्फ वात न खादे वाली नाली भी पची थी वे खादे वाली नाली वात ही सजो पची तो वे पानी भी हेठ वन लहन कर तमाम घनी दुखाई थी तो इन कर वे गर्माइश के खत्म कर वही तुम सजी गर्मी जड़ी भी गर्मी हो तकलीफ न थी सकती समिन प्रोग्राम में अजो को टॉपिक असो है खूनी बादी बवासीर बवासीर है बवासीर की सभी का पैर पैदाइश कि पैदाइश ये है तो जेमल असा के कब्जो है तो जो स्थूल जो है अस पल हों तो उनमें बैक्टीरिया पैदा थन्दा पर बैक्टीरिया ही इनके पैदा कंदा इन कर जरूर याद रखो गर्मी हुजन सियारो हो तबियत खुश हुए बीमार हुजो अवं के हर छह महीन में साल में ब दफ़ा जुलाब जरूर वठना उन यो थो पेट की सफाई थी वी खोड़ बीमारी का अस बची सकूँ जुलाब पसारिका मिली सकता या पसारिका ना वो तवा अड़ी शे खीर है उनमें तचो घी मिले रात जो पी वो सुबह साफ थी तो वे वह शे लाजमी थी अच्छा बवासीर की मेन वजह एक है बो है फिशर फिशर चाहे तो वह जुखम सुराख थी था वन उन्हें रत निकरे तो वह अलग बीमारी है बवासीर अलग आ फीशर अलग आ खूनी बादी बवासीर बई बहन भा अथई खूनी बवासीर में हमेशा याद रखो रत इंदो आ काकुस का पहरी काकुस का बाद रत इंदो आ खूनी बवासीर काकुस अचे पियो जोर लगाए अचे पियो कब्ज थे पियो काकुस जगह ते दाणा थन पिया तो यो बवासीर जी निशानी है उन में खारिश भी थी सके तो डंगन में गोडन का मथे भी सूर थी सके तो याद रखो जेमल अवं ऐसो पाया तो कब्ज अस थे पे पेट वाकूस में वेहूँ पा तो बे टे कलाक लग तो वजन तो अवं इन शे के खत्म कर तो अगत बवासीर थी सके तो इन में सूर भी साड़ो भी जलन भी इन के ला होम्योपैथिक की दवाओं अलहमदुल्ला एतरी कारगरदन ताणा भी हुजन खत्म थी वन पेशेंट जो है ऑपरेशन जड़ी कंडीशन का बची तो सके तो इन करे अड़ी का तकलीफ हुए अड़ी का बीमारी हुए अवं होम्योपैथिक की दवाओं से तैयार थी सोस था बगैर ऑपरेशन के बगैर कें साइड इफेक्ट्स से पर याद रहे जैसे बवासीर है वो अची सकेस तो इलाज कराए सकेस तो गर्म शूं तरल शूं मिर्च मसाला खास कर वो गोश्त देग वाली भाजियों इस्तेमाल न कंदा गाढ़ा मिर्च भी इस्तेमाल न कंदा साई भाजियूं इस्तेमाल कंदा, खीर काढ़े जरूर इस्तेमाल कंदा, पानी जूस वगैरह जो इस्तेमाल तमाम घणो कंदा। बाकी कमल जो रस है वो इस्तेमाल कर सको था। इंजीर जो है पसारियन वट मिले थी, पठानन वट मिले थी, वह डेली एक ब दाणा इस्तेमाल जरूर कंदा। यह बवासीर के लिए बेहतरीन शे है। अज के प्रोग्राम में जो इंजीर के बारे में बुधा तो कल के प्रोग्राम में को डस पते से जो गाल होंद हुई तो डस पतो अड़ो हो जहाँ कर सो तो अजो को डस पड़ो पतो अवे इो ही है इंजीर वो एक खाए मत कमल जो रस इस्तेमाल कर वो यह बवासीर के पेशेंट के लिए बेहतरीन शे है। इन सा दाणा किरी था पन तकलीफू मर्ज घट थी तो वे। कोशिश कर रस में विझी कर कुछ टाइम छे दियो वो इस्तेमाल किया बेहतर है। जी ये ना कि पानी में अंजीर के रख कमल जो रस वी आया तो वह पानी में अंजीर कड़ी पी खाई अवं मत कमल जो रस पी सोता ये तरीके से भी इस्तेमाल कर बेहतरीन शे है। बाकी खोड़ तरीक़ेकार हूँ गोठन में एडा हूँ जरूर बुधा पर अस सिर्फ उ तरीक़ेकार अवे बुधाइंदी जो अथेंटिकल हो जाए इस्तेमाल से को साइड इफेक्ट नुकसान न थियण हो तरीक़ेकार भी ये हो आसानी से कर सको। अज के प्रोग्राम में बवासीर के हिसाब से डस पतो अवज यो बेहतर है। खूनी है तो उनमें एहतियात कर जोर न लगे जो जोर लगन तो रत ही दो। अच्छा इनमें असो होम्योपैथिक वा वह कुछ शूँ समझन था खास कर डॉक्टर कहान तो बाबा काकूस में रत अचे पो डायरेक्ट बवासीर हल वा पर असा होम्योपैथिक वा कुछ कैटेगरी होंद पुछंदा तो पैरी अचे पो या बाद में अचे पो वो चवंदा पैर अचे पो तो समझी वादा तो बवासीर बाद में अचे पो या गड थी अचे पो तो उनका मतलब है तो आंटरन में इन्फेक्शन आंटरन में जख्म तो अड़े तरीक़ेकार अस दवाओं दींदा इलाज कंदा तो यो बुधा जो मकसद सिर्फ एतरो हो तो असि होम्योपैथिक में हर गाल के खोले कर सही नमूने से समझाइंदा जैसा जो पढ़े पो वो समझी सके तो हाँ पेशेंट जो मोड आया उनके असल बीमारी है सिर्फ़ पेशेंट के चवण से ही दवाओं लिखण तो यह डॉक्टरी कान हूँ ये डॉक्टरी इन तरीके से पेशेंट तैयार न थींदा केडी मल डॉक्टर पा वेठो आ तो उनके इलम है तो वह इलम ही उनके एतरा वा वा डॉक्टर वेठा अलहमदुल्ला सकरण में वेठा बाहर तो अलग हूँ सकरण में अलग केतरा वा डॉक्टर वेठा हर को वेठो आ पर घना कर पेशेंट असा डे अचन था वजह चाहे तो अस केस के खोले सही दवा दियूँ पाया दवा खाण से पेशेंट के रिलीफ मिले पो तुझी वजह यही आ जी मल असकी स्टडी थी असर हर शे अलग अलग कर छा ही केस त पेशेंट इंदो तक यह सवाल कर जैसा बीमारी खुली वी तो हाँ असल बीमारी इनके यहाँ उन्हें जी दवाओं अलग थी वेंदू अव दवाओं दींद पेशेंट अवज जरूर तैयार थन्द ये सब शे न इंदून ये सब शे पढ़न से इंदून तजुर्बे से इंदून कें वट कम मू कह पो ही समझी सके तो छो तो किताब सिर्फ़ यह बुधाए थी तो ये बीमारी है इन जी अलामतू आएं बस हाँ उनसे गड जी बी तकलीफून बिया शन किथा पैदा थी इं शूँ किताबन में हरगिज न मिली कड़े पेशेंट के कड़ी दवा दिणी है कड़ी के नह दिणी केतरी पावर में दिणी है यो सिर्फ़ सिर्फ़ यह सब शे अवे तजुर्बे से मिलन थी अलहमदुल्ला मुझे दादे से गड सिर्फ़ नो महीनो कम थे छो तो वो पढ़ाई में अची वासी दादे की वफात थी पी बाबे से गड तकरीबन मुख्य पंज का छह साल प्रैक्टिस मुझी थियल है को केस हूँ जो मुझे समझ में नई तो बाबे से डिस्कशन कह तो वो मुख्य हर गाल समझाए छा जैसा पेशेंट जगह ट्रीटमेंट आऊँ पा कह तो बुधाने जो मतलब त पढ़ाई से गड तजुर्बो बई शूँ अलहमदुल्ला मुख्य मिली तो अज मैं पाने पा ये समझा तो वाकई कामयाब आया पर यह सब शूँ जो दुआओं उन्होंने अवज दुआओं के कर अज एतरा कामयाब हूँ तो अस सकरण में अलहमदुल्ला बिल्डिंग पाँगी जगह पाँगी पोजिशन ठाए वेठा आयो तो खोड़ पेशेंट डॉक्टर्स जगह हूँ वह भी चवंदा यार तुम होम्योपैथिक इलाज कराओ ए फलाने डॉक्टर वेठो होदा हल वो तुम्हारी बीमारी खत्म थी सके थी तो यो है अलहमदुल्ला दुआओं उन कमाल अल्लाह जो शुक्र है एतरी पोजिशन असके मिली वही
0: सभी अवं बुध पाया जी सकर नवाब शाह एफ एम 90.8 लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सां जी समय तवा डॉक्टर साहब का सवाल पूछी सको था मालूमात वठी सको था ए डॉक्टर साहब का बीमारी के हवाले से जान वठी सको था समय डॉक्टर साहब मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं खानदानी तजुर्बेकार हैं होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज सा सुठे नमूने से वाकिफ़ आन वाबस्ता आन पान लेक्चरर पिण आन यानी कें भी कड़े भी किस्म की तकलीफ है तो डॉक्टर साहब अच्छी मशवरों करे इलाज कराइंदा इंशाल्लाह जरूर सेहतयाबी थींदी। सामिन शफा जण अल्लाह जी साजो कम हुंदो आहे, डॉक्टर अवां सिर्फ़ अहिलो वसीलो। डॉक्टर हारिस साहब खानदानी मशहूर मारूफ डॉक्टर आहिनि, हर बीमारी जो इलाज कनि था, बीमारी खे जड़ खां ख़तमु कयो वेंदो आहे, बग़ैर साइड इफेक्ट जे इलाज कयो वेंदो आहे, यानी प्योर होम्योपैथिक जो जदीद इलाज कयो वेंदो आहे, हिन में कोई साइड इफेक्ट न आहे ऐं बीमारियुनि खे जड़ खां ख़तमु कयो वेंदो आहे। समिन अवां ॿुधो पिया जीअं सकर नवाब शाह FM 90.8 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक साण, ऐं मां अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगणी। जीअं समिन डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे 0027849784763। जी हाँ समय यो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर है, इन FM ते भी लाइव कॉल कर सकता आयो, क्लिनिक ते भी डॉक्टर साहब वो ही नंबर मौजूद होंद है। तवा क्लिनिक जी एड्रेस बुधाया डॉक्टर साहब जी, स्टेशन रोड हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकरंड। जी हाँ समय कें भी रक्षे वाले चवन हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक वनो वो तवे बुधाइंदा, स्टेशन रोड भी मशहूर ही है, नवाब शाह मोड़ वे लहंदा, नवाब शाह मोड़ का थोड़ो ही अगर तुम स्टेशन रोड दे थोड़ो ही अगर पंध कद मुझे ख्याल में एकड़े मिंट में तुम पहुंची वो एक मिंट भी वो है, यानी नवाब शाह मोड़ से लगो लगी है वेझे ही है, उत डॉक्टर साहब के मोबाइल नंबर से कॉल कर पुछी सको मालूम भी वी सो यो नंबर डॉक्टर साहब वट हमेशा मौजूद हों, क्लिनिक यो नंबर मौजूद हों, तव्हांखे परेशान थियण जी ज़रूरत ई न आहे। अचो होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां पंहिंजो इलाज करायो ऐं शफ़ा हासिलु करियो। डॉक्टर साहिबु कॉल वठूं था, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। बाबा केरु ॻाल्हाए पिया किथां खां? डॉक्टर साहिबु कॉल आई लेकिन कनेक्ट न थी सघी बदक़िस्मती सां, को मुझे भा हों को

पाकिस्तान ट्रैकड़ी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तहरान अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत ख़िते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। ईरानी परॾेही चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे बचाव बाबति पंहिंजे हक़ीक़त न खणंदो, नई मामले कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जे वाक़नि खां सबक सिखणु घुरिजे। आबनाए हुर्मुज़ बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि।

0: जो वाहिद हल सिफ़ातकारी ॻाल्हियूं आहिनि। थोरियूं सबर जो मुज़ाहिरो करण सां गॾु आलमी कानूननि तहत पंहिंजूं ज़िमेवारियूं पूरियूं कनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ यू ए ई में एटमी बिजली घर ते ड्रोन हमले जी मुज़म्मत करे चयो आहे त मुश्किल वक़्त में यू ए ई हुकूमत ऐं आवाम सां गॾु आहियूं।
1: पाकिस्तान में मुक़रर सऊदी सफ़ीर नवाफ़ बिन सईद जी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात में तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मौजूदा सूरतहाल में थींदड़ अगभराई ते बि ग़ौर वीचार कयो वियो। सऊदी सफ़ीर पारां खिते में अमन जी क़याम लाइ पाकिस्तानी कोशिशुनि जी वाखाणी।

भारत पहिरीं शिकस्त खां ई ॿाहिरि नाहे निकितो। ॿीहर ललकारियो त भारत जी जाग्राफ़ी तब्दील करे खेसि तारीख़ जो हिसो बणाए छॾींदासीं। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त अफ्रीका ऐं इसराइल में ॿीहर जंग जो इम्कान नाहे। ॿई मुल्क जंग नथा चाहिनि। 28 तरमीम ज़रिए 18 तरमीम खे ख़तम करण वारियूं ॻाल्हियूं बि शोशो आहिनि।

वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि तरक़ियाती बजट बाबति इजलास, हलंदड़ साल जे तरक़ियाती बजटनि वारनि मनसूबनि जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में ईंदड़ साल जी तजवीज़ कयल तरक़ियाती मनसूबनि ऐं फंड्स ते बि ब्रीफिंग। क़ौमी नोयत जे पाणी ज़खीरनि ऐं बिजली वारनि मनसूबनि ते बि इजलास खे आगाही ॾिनी वई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त बहितर कारकर्दगी ॾेखारींदड़ वज़ारतुनि खे बिना देर बजट जारी कई वञे, पाणीअ जा ज़खीरा वधाइण वारनि मनसूबनि खे तरजीह ॾिनी वञे।

सिंध असेंबलीअ मां घरेलू मुलाज़मनि जे तहफ़ुज़ वारो बिल मंज़ूर। बिल पार्लियामानी मामलनि जे वज़ीर पेश कयो। शर्जील मेमन सवालनि जा जवाब ॾींदे चयो त सिंध सरकार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ते 500 खां वधीक बसूं मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हली रहियूं आहिनि। अपाची वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो त बरसातुनि सबबि ईंदड़ ॿोॾ खे मुंहुं ॾियण पाणी जी कुदरती वहिकरनि तां कब्ज़ा हटाए रहिया आहियूं। सखर बैराज जा बि सभु दर तब्दील थी रहिया आहिनि।

इन वक्त मुल्क की सूरत हाल गंभीर ए बदमनी उरूज से है। केपी ए बलोचिस्तान में सूरत हाल बगावत जड़ी ए सिंध में धाड़ेल रौज है। कराची में मीडिया से गलंदे जेयूए सरबराह मौलाना फजल रहमान जो चवण हो तो हुक्मरान नमूनामान बाबत संजीदा नाहन वो जदे चाहन आईन की शिकिल बिगाड़े छदीन था। एहतजाज से मुल्क जहा दुश्मन सड़ो वे तो

की हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरत में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो।

0: सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, पर जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-768।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो GFM 90.8।

0: अमेरिका ऐं ईरान में जंग ॿीहर शुरू थियण जा ख़दशा वधी विया। अमेरिका जो बारूद ऐं हथियारनि सां भरियल जहाज़ इसराइल मोकिलण जो सिलसिलो तेज़। इसराइली मीडिया चयो आहे त अमेरिका ईरान ते हमलनि जी तयारी करे रहियो आहे। हथियारनि सां भरियल कार्गो जहाज़ इसराइल पहुची रहिया आहिनि। पासदारान इनकलाब जी अमेरिका खे ॿीहर गर्ती वरिजाइण ते फ़ैसिलाइतो जवाब ॾियण जी धमकी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फज़ल शकार जी चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जारियत जो जवाब फ़ैसिलाइतो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो।
1: The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. We agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week.
2: सदर ट्रंप पाकिस्तान जे चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो। सदर ट्रंप हिन वक़्त बि ईरान मसले जो हल सफारती ज़रिए चाहे थो। अमरीकी परडेही वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो हो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां वाइदे जा इम्कान मौजूद आहिनि। तेहरान में फ़ैसला केर करे रहियो आहे, मुंझारा मौजूद आहिनि।
0: पाकिस्तानी ट्रैकड़ी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तेहरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत ख़िते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे रचाउ बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो, नई मामले ते कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जे वाक़िअनि खां सबक सिखणु घुरिजे। आबनाए हुरमत बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि।
2: खिते में जटादार अमन ऐं इस्तेहकाम जो वाइद अल सिफ़ारतकारी ॻाल्हियूं आहिनि। थुरियूं सबर जो मुज़ाहिरो करण सां गॾु आलमी कानून तहत पंहिंजूं ज़िमेवारियूं पूरियूं कनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ यूएई में एटमी बिजली घट ते ड्रोन हमले जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त मुश्किल वक़्त में यूएई हुकूमत ऐं अवाम सां गॾु आहियूं।

0: पाकिस्तान में मुकर्रर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात बेतरफ़न लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल मौजूदा सूरत हाल में थींदड़ अकबराई ते भी गौर वीचार किया वो सऊदी सफ़ीर पारा खिते में अमन के क़याम लाइ पाकिस्तानी कोशिशों की वाखाण
1: भारत पहरी शिकस्त का ही बाहर ना निकतो बीहर ललकारो तो भारत की जोग्राफी तब्दील करे खेस तारीख जो हिस्सों बढ़ाए छदीदी दिफा वे वजीर ख्वाजा आसिफ है अफ्रीका इसराइल में बीहर जंग तो इम्कान ना बई मुल्क जंग ना चाहन 28 तरमीम जरिए 18 तरमीम के खत्म करण वाली गाल भी शोशो है
0: वजीर आजम की सदारत हेठ तरक्याती बजट बाबत इजलास हलंदड़ साल के तरक्याती बजट वारन मनसूबन जो जायजो वरतो वयो इजलास में इंदड़ साल के तजवीज कल तरक्याती मनसूबन फंड्स से भी ब्रीफिंग कौमी नोयत के पानी जखीरन बिजली वारन मनसूबन से भी इजलास की आगाही दिनी वही वजीर आजम चयो तो बेहतर कारकर्दगी दिखारींदड़ वजारतुन के बिना देर बजट जारी कई वे पानी जहा जखीरा वधायण वारन मनसूबन के तरजीह दिनी वे
1: पाकिस्तान का सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने जो मुतालबो 430 अरब रुपये का नवा टैक्स लगाने की भी तजवीज दई छी जरिए मूजिब IMF विशन जो पाकिस्तानी इख्तियार बजट ते गालियन के आखिरी ढी है IMF सेल्स टैक्स से छूट खत्म करने जो मुतालबो कदे शरा 22.8% में घटाए 18% करण की तजवीज दिनी है इन्फोर्समेंट की मद में भी 778 अरब रुपया रखने वो है
0: सिंध असेंबली में घरेलू मुलाजमन के तहफुज वो बिल मंजूर बिल पार्लियामानी मामलों के वजीर पेश किया शर्जील मेमन सवालों का जवाब डींदे तो सिंध सरकार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से 500 का बसू मुख्तलिफ रूट्स से हली रही आपाशी वजीर जाम खान शोरे तो बरसातों सबब इंदड़ बोर्ड के मोह डण पानी के कुदरती वहकरन तक कब्जा हटाए रहा सखर बैराज जब सब दर तब्दील थी रहा है।